0: था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 संवत्सराला विश्वासम, विकासम, प्रजा संक्षेमम।